0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बट्टी की आवाज आ रही है, ये तो आप वहां पे और ज्यादा एग्जैजरेटेड है, ज्यादा है सुनाई देगी, और इसका कुछ इलाज नहीं लग रहा
1: है। यहाँ पे ये मसला तो नहीं करेगा माइक अगर?
0: नहीं नहीं बिल्कुल, यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं करेगा।